अंतलय षडाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जस गुताम न होई तू करता

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारी गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंद्रासन बैठे देवते अंदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले

सोई सोई सदा सच साहिब सच सचि नाई है पीहोसी जाय न जासी रचना जिन रचाई।

इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम गावो, आप हाथ मोहे बचावो, सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा।

अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जशन उपजायो।

स्वरूपा रंग पयो राव गई भूपा अंडा जेर से दज कीने उत्पज खान बहु रच दीने कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर।

चाय। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, गिलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखे अनकोशय करता। श्री अस्तुजा भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछित फल पावे सोई, दुख न दिसे व्यापत कोई अडिल।

मन क्रम वचन विचार चौपाई। मैं ना गणेश प्रथम नाओ किसन विसन कबहू न त्याओ। गान सुने पहचान तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो।

ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को अंक तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक मत एक न मान्यो। सिमर शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखान्यो। दोहरा

करंग सकल त्याग दोष का संगमान ते बिन साय सकला परम कार पूजा सकल पार ब्रह्म सात संग पाप अमरख वै दस भगवत गुमा तू तुम होवै भगवान की टहल कर नितन युत मानता नर पै बिसन प्रीत हर कचन हृदय सब नानक भगवती भगवान का पास पंडित जो मन प्रभु राम नम आत्म सुध राम नम सार रह पिवास पंडित का उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसा सो पंडित फिर जो नया वेद पुरा समृत पूजा मूल सुख मह जान स्थूल जहाँ वर्ण कुति उपदेश नानक पंडित का सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जह वर्ण मह जपै को नाम जो जो जपै तुस्गिया तुय सा संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर अवतार पास प्रेत मुक्त पात्र कवतार सर्व रोका योखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम का जुगत कितना पाई धर्म नानक मिले जिस लिखिया दुर्कर्म जिसका मन पार ब्रह्म कर्म है जिसका नाम सात राम दास सात राम तिहन द्रिया दाह दस अंतन पाए तिन पाए सदा निकट निकट हर जान सो दाह दर्घ प्रवान अपने दाह पाव कृपा कर तिह दास कहो सब सोजी पर सकल संगा तुम उदास जुगत नारायण राम दास प्रभु की आज्ञा तुम्हें हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तस हर तह शोक सदानंद तहन वियोग तस स्वर्ण तैस युष माटी तस अमृत तह बेख खाट तस मान तस अभमान तस रंग तस राजान जो वरताय साई जुगत नानक हो पर कही जाय जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सकले ठाउ जेत जेत कार राखे तस तेन पिकन कराउ जोग प्राप पावे सोई पन होग पसरे आप हे अनंत तरंग लखन जय पार ब्रह्म के रंग जय सिमात दिय तह प्रगाह पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहार श्लोक उस्तत करिह नीक जाने अंत न पारावार नानक रचन प्रभु रचि वह वेद अनुक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पय तीर्थवास कई कोट बन प्रमय उदास कई कोट वेद के स्रोत कई कोट तपि स्रोत कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट कव का विचार कई कोट नावतन नाम त्याव नान कर दिकांतरा पावे कई कोट पै अभिमान कई कोट आंदा ज्ञान कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिघातम कोर कई कोट पर दर्भ कव हृह कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रम आहि कई कोट प्रदीह प्रमाह जित जित लाव जित तित लगना नान करति की जान करता रचना कई कोट सिद्ध जाति जोगी कई कोट राज रह भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पाथर बिखन बजाय कई कोट पावन पाण व्यास अंदर कई कोट दीह भूमंडल कई कोट शशि सूर्ण के अतर कई कोट देवदान अंदर सर शतर सगर समग्री अपना सूत तारा नानु जह जह पावे ते सह नह तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत रसा सत कई कोट की रतन समृत कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट की चरजीव कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थिवे कई कोट जाख किनर प्रसाज कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाच सब दिन गिराय सब हुते दूर नानका अलिप्त रह पार पूर कई कोट पाताल के वास कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बजो निफिर है कई कोट बैठ दही खाही कई कोट काले थक पाही कई कोट किए तनवंत कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जह जह पाणा दह दारा के नाम सर्ग प्रभु के हाथी कई कोट पय वैरागी राम नाम सांग तिन लिवलाग कई कोट प्रभु कहु को जंति आत्म पार ब्रह्म लहंति कई कोट दर्शन प्रभ्यास तिन को मेरे प्रभु अमराह कई कोट मांग सात संग पार ब्रह्म लागा रंग जिन कहु आव सो प्रसन्न अनुति जान सदा तन तन कई कोट खंड खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जुगत किन विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट किन वह पात प्रभु दिखु ब्रह्म समाता कांतना जन कोई आप नान प्रभु सोच कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रकाश कई कोट तद की बीते सदा निहार है कुनेत कई कोट नाम रह

सा प्राप्त महंत आवचन कंस लागे प्रीत भक्त करो प्रभु की नित नियत एक ओट एक आधार नानक मंगना प्रभु सार प्रभु की दृष्टि महासुख हुई हर पाए बेला कोई जिन चाख से जानत बता ने पूर्ण पुरख नहीं डुला नहीं सुबर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साधु का संग परिसरना सब त्याग अंतर प्रकाश आनंद लेवला गुड़ भागी जपया प्रभु सोई

नमस्कार। केम कुशल सहजानंद सासंग परमानंद नरक निवार उदारोह जीव गुण गोविंद अमृत रह पियो चित चित्त।

सा सुन स्थल दिशा देशल लेखा बेस्थल पेखा जमीनुल जुमाहा विकुल माहा क्री मुल्क माला के जुरत जुमाला के अचलन प्रकाशा के मित्तो सुभाषा के अजब स्वरूपा के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह के आत्म प्रभा के अचलन अलांग्या के मित्तो भांग्या मद भार सन प्रया प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गल मनाम हर बार गांज हर नर प्रभाजन गल प्रणाम मन मन सलाम हर नर खन बर नर मंड अनुभव अनास मन बल प्रकाश गुण गल प्रणाम जल थल मदाम छिंजांग आसन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमन दिस विस भन जल थल महंत दिस विस बेअंतन भव अनास धरास जाल बाय कै सदा ओंकारयाद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर बार काल घर घर प्रणाम चित चरण नाम छिंज गात जिजला बात झंझ गात रंज बात टुट भंडार ठट पारा डीस धर्मत ढीठ कर मन वर्ण अंत दाता महंत हर बोलमला छंता प्रसाद करनाल हर कल है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व भान है तृत के धर्म है जाके करण है मन मान है जग जान है सर्व भर है सर्व अंकार है सर्व पास है सर्वनाश है करनाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है पारती पर है करनाकर है जपा जापै थपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करनाकृत है कृता कृत है धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खलकायक है विश्वंबर है करनालय है निर्पनायक है सर्व पायक है भव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलन कृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रजात छ नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बिंद नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासम ताम संसात रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो करहे कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे लालंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बाक बंके भंगी स्वरूपे लंगी लाभे त्रिभंगी त्रिकाले लंगी कामे कच दिछंद अजय अलै अभै अभै अबू अजू अनास अकाश गंज भंज अलख भख अकाल दयाल लेख भेख नाम काम गाह अटाहा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग भरमंग गंजे लेखे भुजंग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकाम विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तल निवासी जायब विभूते जायब गरीमे हरियम करियम करी मुल हिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग

0: जय प्रसाद तेरे सकल सिद्ध ठाक है, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताक है।
1: जय प्रताप तुझको ना पहुँचे, मन साह साह सिमरो प्रभु चे।
0: जय प्रसाद पाई तो लभ दे, नानक ताकी भक्त करे।
1: जय प्रसाद भूखन पहरी जे, मन ते सिमरत क्यों आलस की जे।
0: जय प्रसाद हस हस तस्वारी, मन ते प्रभु को कबू ना बिसारी।
1: जय प्रसाद बाख बिलख तना, राख परोई प्रभु अपने मना।
0: जिन तेरी मन पंत बनाई, उठत बैठत सत से त्याई।
1: तिसे त्याई जो एक लखे, यहाँ नानक तेरी रखे।
0: जय प्रसाद करे पुन बोदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।
1: जय प्रसाद तू चार व्यवहारी, तिस प्रभ को सा सा चितारी।
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमरो सदा दिन रात।
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह।
1: जय प्रसाद सुने कर नाद, जय प्रसाद पेखे बिस्माद।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सह जय बसना।
1: जय प्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद सुपूर्ण फले।
0: जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सह समावे।
1: ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जय प्रसाद तू पर संसार, तिस प्रभु को मूल न

0: ये प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए
1: आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभु कृपाते होए प्रगास प्रभु।

0: साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजै सब आप।
1: आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई।
0: साध के संग न कबू तावे, साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बसे गोचर लहे, साधु के संग अजर सहे।
0: साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे।
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म।
0: साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान।
1: साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है।
0: साधु कै संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को बरसावे।
1: साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा।
0: साधु कै संग पार पलायन, साध संग अमृत गुण गायन।
1: साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म।
0: साध के संग नहीं कचकाल, दर्शन पेट धोत निहाल।
1: साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे।
0: साध के संग यहाँ वहाँ सुहेला, साध संग बिछड़ तर मिला।
1: जो इच्छे सोई

0: लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। ब्रह्म ज्ञानी सदा नलेप जैसे जल में कमल लेप।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नलेप जैसे सूर सर्प को सोख।
0: ब्रह्म ज्ञानी के दिश समान जैसे राज रंग को लागे तो

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दोष अमृत बसी
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्धि आगत ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास।